0: We'll be back right after the commercial break.
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मधम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं, बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है, क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी।
2: ज्वानी द ज्वानको न बगैर निमगिड़ी हो कुचर त दग ज्वानको पवख बाने गम उनकलेशी न प रारवान वख की दग ज्वानके स्तासु द खाइस द खराबे दो बाइस जुड़ देशी द ऑयल स्किन और द दानो द पारा यो डियर खास मेडिकेटेड फार्मूला डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम तुम चिप सलूर सौ रुपए बाने द सलूर बेहतरीन इंग्रेडिएंट सर तैयार शुए। डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश तुम चिप द ऑयली स्किन और द एक्नीज द पारा देर बेहतरीन फार्मूला दा कुम चिप सलूर उरजु की सासुद स्किन एक्नीज पिंपल प मुकम्मल तो गबाने खत्म ही और ये वाज़ दाना द दग दानो चकम दागुन दी अगर हम प मुकम्मल तो गबाने खत्म हीगी पदे के बेहतरीन एक्टिव इंग्रेडिएंट शामिल दी लका बेंजोइल परऑक्साइड सल्सिलिक एसिड टी ट्री ऑयल और क्लिंडामाइसिन कुम ची यो देर बेहतरीन एंटी बैक्टीरियल एंटी

तो मेरे प्यारे सामीन बताइएगा क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। एंड अल्फाज नहीं होते बल्कि जो है ना कभी किसी के चेहरे की मुस्कुराहट, कभी किसी की आवाज और कभी किसी की खामोशी और कभी किसी की याद बनकर दिल में

कहते हैं कि ऐ अल्लाह बारिश भेज दे, दिल कहते हैं कि बस ऐसी बारिश हो कि मौसम भी ठंडा हो जाए और साथ में मतलब यादें भी ताजा हो जाए ना। अल्लाह ताला अपनी रहमत फरमाए जी और एक खूबसूरत सी बारिश अता फरमाए, फिजा को ठंडक दे, जमीन को सुकून दे और हमारे दिलों को भी जो है ना वही सुकून अता फरमाए जिसकी हमें जरूरत है। आमीन सुम आमीन। और अगर आज बारिश नहीं हुई तो कोई बात नहीं जी, रेडियो दिलबर एफ एम 94 सवाबी आप लोगों के संग संग है, रेडियो दिलबर एफ एम 94 सवाबी की आवाज आप लोगों के साथ साथ है। हम अल्फाज की बारिश करेंगे, मोहब्बतों की बात करेंगे, एहसास जगाएंगे, यादों के दरीचे खोलेंगे और शायद जो है ना किसी के दिल में छुपी हुई वही बात जबान पर ले आएंगे जो मुद्दत से दिल में कहीं कैद है, जो मुद्दत से दिल में कहीं दबी हुई है। ओए ओए ओए ओए क्या कहने जी, क्या बात है जी। अच्छा जी तो आइए जनाब सांस थोड़ी सी आहिस्ता कीजिए, दिल को थोड़ा सा जो है ना खामोश कीजिए और मोबाइल की आवाज जरा बढ़ा दीजिए क्योंकि अगला एक घंटा शायद जो है ना आपको किसी ऐसे शख्स की याद दिला दे जिसे आप भूलने की लाख कोशिश करते हैं मगर दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। और ये एफएम 94 रेडियो दिलबर सवाबी है जी एंड ये लम्हे एहसास के नाम है और आज की ये महफिल आपके नाम है। अच्छा कभी आप लोगों ने महसूस किया है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते नहीं है बल्कि जो है ना हमारे दिल में उतर जाते हैं। हाय हाय क्या कहने भाई।

याद रखिए लिसनर्स कि हम रोजाना कितने ही लोगों से मिलते हैं, रास्ते में चेहरे देखते हैं, लोगों से बात करते हैं, कुछ लोग हमारे दोस्त बन जाते हैं, कुछ चंद लम्हों के साथ ही होते हैं और फिर वक्त उन्हें हमसे दूर ले जाता है। लेकिन कभी कभी इसी भीड़ में एक ऐसा शख्स मिलता है जिसका मिलना सिर्फ जन मुलाकात नहीं होता, वो हमारी जिंदगी के एक एहसास बन जाता है। और याद रखिएगा लिसनर्स, फिर अजीब बात है ये, मतलब जो है ना एक अजीब किस्म की बात है ना, फिर अजीब बात होती है कि वो सामने ना भी हो तो सामने महसूस होता है, उसकी आवाज ना भी सुनाई दे तो जैसे कान उसकी आवाज ढूंढते रहते हैं, वो बात ना भी करे तो मोबाइल की खामोश स्क्रीन भी एक किस्म का सवाल करती है, क्वेश्चन करने लगती है कि आज उसका कोई पैगाम क्यों नहीं आया भाई, उसका आज क्यों मैसेज क्यों नहीं आया। याद रखिएगा लिसनर्स कि मोहब्बत शायद जो है ना यही तो है कि इंसान किसी एक शख्स की मौजूदगी का आदी नहीं होता बल्कि जो है ना उसके एहसास का, ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए, उसके एहसास का आदी हो जाता है। और फिर उस शख्स का एक छोटा सा पैगाम भी पूरा दिन खूबसूरत बना देते हैं, उसकी एक मुस्कुराहट भी दिल को कितने कितने कितने सुकून दे देती है, और उसकी नाराजगी भी पूरी दुनिया की रौनक मतलब जो है ना फीकी कर देती है। कभी कभी हम किसी से ये नहीं कहते कि तुम मेरे लिए कितने खास हो, क्योंकि जो है ना डर लगता है ना, हमें डरते हैं ना हम, मुंग तुम रतकड़क हो नहीं हूँ चिचा था, लेकिन कम दे नौ दगा खबर कौलिश सुमरा अहम किया जाता है या बहुत ज्यादा सुना जाता है, उसको मैं कोशिश करूंगा कि प्रोग्राम में शामिल कर दूं। एंड मैसेजेस भी साथ साथ आप लोगों के आ रहे हैं, मैसेजेस को भी साथ साथ शामिल करते हैं, कौन कौन हमारे साथ दे रहे हैं और कहां कहां से हमारे साथ दिए जा रहे हैं। अच्छा जी, 09382804595 पे आप जल्दी जल्दी से कॉल्स करें, थोड़ी देर तक कॉल्स को भी शामिल किया जाता है। एंड मैसेजेस चेक कर लेते हैं कौन कौन हमारे साथ दे रहे हैं। हाँ यस,

अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भैया? ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, खैरियत आपकी तरह। आपका प्रोग्राम भी माशाल्लाह अच्छा है। सॉन्ग प्ले कर दें प्लीज। प्यार है तुमसे मगर प्यार से डर लगता है। आपको स्पेशल सलाम मी प्यारी ताहिर, प्यारी ताहिर जी कमदन मास्टर प्रोग्राम के शामिल शो वही छे सॉन्ग प्ले के कोशिश बखोज मनाना शुक्रिया मेहरबानी एंड डीरा डीरा डीरा मनाना। अच्छा जी, मैं कुछ थोड़ी सी उर्दू में बातें करना चाहता हूँ क्योंकि उर्दू के हमारे सुनने वाले बहुत ज्यादा हैं जो कि उर्दू को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, और फिर मेरी वही वही वही ताहिर की उर्दू वही क्या कहने जी, क्या बात है। चलें एक कॉलर भी साथ साथ हम चेक कर लेते हैं कि लाइव कॉल पे हमारे साथ कौन देंगे, कहां से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।

याद रखिए कि लिसनर्स के कभी कभी ना मोहब्बत किसी बड़े दावे का नाम नहीं होती, मोहब्बत तो बस जो है ना एक एहसास का नाम होती है, एक ऐसा एहसास जो इंसान को भीड़ में भी किसी एक शख्स की तलाश में रखता है। हजारों आवाजों के दरमियान सिर्फ जो है ना एक ही आवाज अच्छी लगती है, हजारों चेहरों के दरमियान सिर्फ जो है ना एक चेहरा याद रहता है, और लाखों लोगों में दिल सिर्फ जो है ना एक शख्स के लिए भी इख्तियार धड़कता है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बिल्कुल खामोश बैठे हों, आप बिल्कुल खामोश बैठे हों, इर्द गिर्द कोई बात ना हो रही हो, लेकिन दिल के अंदर किसी एक शख्स से पूरी गुफ्तगू जारी हो, आप उससे कुछ कहना चाहते हों, बहुत कुछ कहना चाहते हों, मगर अल्फाज जबान तक आने से पहले ही आंखों में उतर जाएं। ये मोहब्बत है मेरे दोस्त, ये वो कैफियत है जहां इंसान सामने वाले को देखे बगैर भी उसे महसूस कर लेता है। कभी उसकी याद रात की खामोशी में उतर आती है, कभी किसी गाने के बोल अचानक दिल को छू जाते हैं, कभी मोबाइल हाथ में आता है और उंगलियां बेइख्तियार जो है ना उंगलियां बेइख्तियार उसी का नाम लिख देती हैं, उसी के नाम पर रुक जाती हैं। फिर इंसान चंद लम्हे के लिए सोचता है, चंद लम्हों के लिए मतलब जो है ना ये सोचता है कि पैगाम लिख दूं या ना लिखूं, और फिर दिल डरता है कि सामने वाला मसरूफ ना हो, कहीं जवाब ना आए, कहीं हमारी मोहब्बत उसे बोझ महसूस ना हो, और यूं एक पैगाम जो लिखा गया था वो भेजने से पहले ही मिटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन एक अजीब बात है ना मोहब्बत भी, कि इंसान ये बात करने के लिए पूरी दुनिया से मतलब जो है ना छुप सकता है, मगर जो है ना उसी शख्स को अपने दिल की बात बताने से डरता है। और कभी कभी तो बस जो है ना इतनी सी ख्वाहिश होती है कि वो अचानक कहीं से फोन कर दे, कहे कहाँ हो, वो कहे कहाँ हो, आज तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आ रही है, आज बहुत ज्यादा याद आ रही हो। अच्छा लिसनर्स, कॉल्स कर सकते हैं आप, एंड ये है कि कुछ और पैगामात भी हैं, इन्हें भी साथ साथ मैं एंटरटेन करता हूँ, शामिल करता हूँ कि कौन कौन हमारे साथ दे रहे हैं, कहाँ कहाँ से हमारे साथ दिया जा रहा है। अच्छा जी, हुरैन तनहा हमारे साथ दे रही हैं जी, और हुरैन तनहा के साथ सारा तनहा भी हैं, और कह रही हैं कि चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, एंड रिस्पेक्टेड सर, मुझे आपकी तरह कामयाब आरजे बनने का ड्रीम है। और रिस्पेक्टेड सर, क्या आरजे बनने के लिए कोई डिग्री की ज़रूरत होती है? एंड सर, योर शो इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड ऑलवेज लाइक मी, हुरिया फ्रॉम तुताले। हुरिया हमारे साथ दे रही हैं जी, हुरिया आरजे बनने के लिए किसी डिग्री की जरूरत होती है, वो वो वो वो वो वो वो वो हो रही है कि इस बात को हम आगे लेके चलते हैं जी, और इस बात को हम थोड़ा सा बयान करते हैं, एंड साथ साथ आपके लिए एक रोमांटिक किस्म का ट्रैक भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। और कौन सा वाला ट्रैक? यस, हाँ अच्छा हुरिया, मैं यहाँ ये बात कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया आपके खूबसूरत अल्फाज और मोहब्बत में मेरे लिए वाकई जो है ना बहुत मानी रखे हैं। और जहाँ तक आरजे बनने के लिए डिग्री की बात है, तो लाजमी तौर पर कोई मखसूस डिग्री ज़रूरत नहीं है, या मतलब कोई मखसूस डिग्री ज़रूरी नहीं है। अच्छी आवाज़, साफ तलफ़्फ़ुज़, गुफ्तगू का अच्छा अंदाज, एतमाद, जनरल नॉलेज, मुसलसल प्रैक्टिस, और सबसे बढ़कर सामीन के दिल को समझने की सलाहियत है। सबसे बढ़ के ना लिसनर्स के दिल को समझने की सलाहियत बहुत अहम होती है। अगर आपका ख्वाब एक कामयाब आरजे बनना है, तो अपने ख्वाब को सिर्फ ख्वाब ना रहने दें, आज ही या आज ही से अपनी आवाज और अपनी गुफ्तगू पर मतलब जाना काम करना शुरू कर दें।

अच्छा, मेरे बहुत सारे दोस्त इस बात पे थोड़ा सा वो होंगे, सोच रहे होंगे, या फिर ये बात उनकी सोच में आ रही होगी। याद रखिए कि लिसनर्स, की एक अच्छा आरजे सिर्फ आवाज नहीं होता, सिर्फ माइक के पीछे या माइक के सामने जो है ना बैठकर अल्फाज बोल देना आरजे होना नहीं होता। असल आरजे वो है जो सामीन के दिल की धड़कन सुन सके, उनकी खामोशी पढ़ सके, उनके लहजे में छुपी उदासी महसूस कर सके और उनकी मुस्कुराहटों के पीछे छुपे हुए आंसुओं को भी मतलब जान पहचान सके। क्योंकि रेडियो की दुनिया अजीब और खूबसूरत दुनिया है जी। यहाँ सामने चेहरे नहीं होते, आंखें नहीं होती, हाथ नहीं होते, सिर्फ आवाज होती है, मगर कभी कभी यही एक आवाज हजारों चेहरों से ज्यादा करीब महसूस होती है। मैं आपको देख नहीं रहा या मैं आप लोगों को देख नहीं रहा था, लेकिन शायद आप मुझे सुन रहे होते हैं। आपके हाथ में मोबाइल होता है, गाड़ी में रेडियो चल रहा होता है, किस कमरे में आप खामोशी से बैठे होते हैं, कोई अपने काम में मसरूफ होता है, कोई सफर में होता है, कोई रात की तन्हाई में किसी को याद कर रहा होता है, और मेरी आवाज इन सब के दरमियान कहीं आपके दिल तक पहुंच रही होती है। और मेरे लिए इससे खूबसूरत रिश्ता और क्या होगा लिसनर्स, जरा आप इमेजिन करें, तस्वीर करें। मुझे मालूम नहीं होता कि इस वक्त मेरी आवाज सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है या आंखों में नमी। मुझे मालूम है या मुझे मुझे ये नहीं मालूम होता कि आप खुश हैं या किसी को याद कर रहे होते हैं। और मुझे नहीं मालूम कि आपके दिल में मोहब्बत का मौसम है या जुदाई की खजान, लेकिन एक चीज जरूर जानता हूं मैं कि रेडियो का असल हुसन उसी वक्त पैदा होता है जब आवाज और दिल के दरमियान कोई फासला बाकी न रहे। और कभी कभी सामीन सिर्फ जो है ना एक गाना सुनने के लिए रेडियो ऑन नहीं करता, वो शायद जो है ना किसी की आवाज में मतलब एक एहसास तलाश करते हैं, किसी की आवाज में एहसास महसूस करते हैं, किसी ऐसे शख्स की आवाज जो उसे ये एहसास दिला सके कि हाँ कोई है जो मेरी बात को समझता है। और यही वो मकाम होता है जहाँ एक आरजे सिर्फ आरजे नहीं रहता, वो सामीन का हमराज बन जाता है। और किसी के लिए मेरी आवाज शायद जो है रात की तन्हाई के साथी हो, किसी के लिए सफर की रफाकत, किसी के लिए उदासी का एक सहारा या उदास दिल का एक सहारा, किसी के लिए मोहब्बत की याद, और किसी के लिए सिर्फ जाना एक खूबसूरत सा एहसास। और शायद इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सामीन के दिल को समझना सबसे बड़ी फनकारी है जी।

अच्छा लिसनर्स, मैं कुछ थोड़ी सी चंद बातें यहाँ और भी कहना चाहूंगा, करना चाहूंगा कि याद रखिएगा मेरी एक बात, मेरे इंतहाई मोहतरम हज़्ज़ और काबिल एहतराम और दिल के बहुत ज्यादा करीब रहने वाले सामईन, सुनने वाले सामईन, आज जरा दिल की बात करते हैं। आज जरा माइक के उस पार और इस पार के दरमियान मौजूद इस खूबसूरत रिश्ते की बात करते हैं जिसका कोई नाम नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है और ये कि कोई एग्रीमेंट नहीं है, मगर फिर भी ये रिश्ता बरसों से कायम है। एक तरफ मेरी आवाज है और दूसरी तरफ आपके दिल हैं, एक तरफ एक माइक है और दूसरी तरफ, दूसरी साइड पे, दूसरी जानेब, दूसरी तरफ हजारों कहानियां हैं। एक तरफ रेडियो स्टूडियो की खामोशी है और दूसरी तरफ अनगिनत घरों में, गाड़ियों में, दुकानों में, दफ्तरों में, रास्तों और तन्हाई में बैठे हुए वो लोग हैं जो मेरी आवाज़ सुनते हैं, ताहिर की आवाज़ सुनते हैं। और शायद यही रेडियो की सबसे खूबसूरत हकीकत है कि हम एक दूसरे को देखे बगैर भी एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं। अच्छा, मैं अपने हवाले से अगर आपको एक बात बताऊं तो मैं गुज़श्ता तकरीबन जो है ना 15-16 सालों से रेडियो स्टेशंस पर मुख्तलिफ, मतलब जो है ना रेडियो स्टेशंस पर प्रोग्राम करता आ रहा हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से लेकर आज़ाद कश्मीर और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों तक मेरी आवाज़ ने मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसीज का सफ़र किया जी। कभी एक स्टेशन का माइक हाथ में था, कभी दूसरे स्टेशन का लोगो, कभी शहर बदल गया, कभी स्टूडियो बदल गया, कभी प्रोग्राम का नाम बदल गया, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदले। इस बात को आप जरा सुनिएगा और दिल से सुनिएगा, वो इस सामीन की मोहब्बत, लिसनर्स की मोहब्बत। और सच पूछें तो ये मोहब्बत मेरे लिए किसी अवार्ड से कम नहीं है। रेडियो में आपको सामीन दिखाई नहीं देते, ये पहले मैं बात कर चुका हूँ। आपको मालूम नहीं होता कि इस वक्त जो है ना आपकी बात कौन सुन रहा है। कोई तालिब इलम शायद जो है ना किताब के दरमियान रेडियो सुन रहा होता है, कोई ड्राइवर सड़क पर सफर करते हुए आपकी आवाज़ का साथी बना होता है, कोई दुकानदार अपने काम के दौरान आपको सुन रहा होता है, कोई माँ घर के काम करते हुए आपकी बातें सुन रही होती है, आपकी बातों को तवज्जो दे रही होती है। और साथ साथ यहाँ ये बात भी मैं कहना चाहूँगा कि और शायद कोई ऐसा भी होता है जो दुनिया के सामने हंस रहा होता है मगर रेडियो के सामने बैठकर खामोशी से अपने आंसू पोंछ रहा होता है। और आरजे की असल जिम्मेदारी यही होती है कि वो इन सब दिनों को महसूस करे, इन सब दिनों को फील करे। याद रखिएगा लिसनर्स के सामीन के दिल को समझना बहुत बड़ी फनकारी है, सबसे बड़ी फनकारी है। माइक खोलना आसान होता है, बोलना आसान होता है, अल्फाज जमा करना भी आसान होता है, लेकिन किसी अनजान इंसान के दिल तक पहुंचना ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ये फन जो है, ये आर्ट जो है, ये वक्त मांगती है, ये फन तजर्बा मांगता है, ये फन एहसास मांगता है, और सबसे बढ़ के ये फन अपने सामीन से मोहब्बत मांगता है। और शायद यही वजह है कि 15 साल गुजरने के बावजूद जब किसी पुराने सामीन का मैसेज आता है, लिसनर्स का मैसेज मतलब जो है मुझे रिसीव होता है, और वो कहते हैं कि सर आपकी आवाज बहुत अरसे बाद सुनी, फौरन पहचान लिया तो यकीन करें कि दिल एक लम्हे के लिए वहीं चल जाता है जहां से ये सफर शुरू हुआ था, या मतलब जहां से हमने अपना एक स्टार्टअप लिया था। कभी कोई कहते हैं कि आपकी आवाज बचपन से सुन रहे हैं, कोई कहते हैं सर आपके प्रोग्राम ने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है, कभी कोई कहते हैं कि आप कुछ दिन रेडियो पर नहीं आए तो प्रोग्राम सुनने को दिल नहीं करता, या किसी का प्रोग्राम सुनने को दिल नहीं करता। और कभी सिर्फ जाना इतना सा पैगाम आता है कि सर आज आप बहुत याद आ रहे हैं। ये चंद अल्फाज जो है ना जो होते हैं ना, ये चंद अल्फाज हैं, मगर एक आरजी के लिए पूरी दुनिया होते हैं, एक ब्रॉडकास्टर के लिए, एक प्रेजेंटर के लिए। क्योंकि हम सिर्फ जो है ना, हम रेडियो पर सिर्फ अपनी आवाज नहीं देते, हम अपने दिन का एक हिस्सा देते हैं, अपनी तवानाई देते हैं, अपना टाइम देते हैं, अपनी सोच देते हैं, अपना एहसास देते हैं। और बदले में जब सामीन अपनी मोहब्बत का एक छोटा सा टुकड़ा हमें वापस देते हैं, वापस भेजते हैं,
तो महसूस होता है कि हमारी आवाज वाकई कहीं पहुंच रही है। यही तो आवाज का जादू है जी। और आवाज नजर नहीं आती मगर जो है ना याद रह जाती है। चेहरा भूल सकते हैं मगर आवाज नहीं भूलती। साल गुजर सकते हैं, शहर बदल सकते हैं, रेडियो स्टेशंस बदल सकते हैं, प्रोग्राम बदल सकते हैं, मगर एक एक बात में यहाँ ये कहना चाहूंगा, एक बात तय है, मगर अगर जो है ना कोई आवाज दिल में घर कर जाए, मगर अगर कोई आवाज दिल में घर कर जाए तो वो कहीं ना कहीं जो है ना अंदर जिंदा रहती है, इंसान के अंदर जिंदा रहती है। और शायद इसीलिए कभी मैं रेडियो से दूर होता हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे मैं सिर्फ जो है ना माइक से दूर नहीं हुआ, मतलब मैं सिर्फ जो है ना माइक से माइक्रोफोन से दूर नहीं हुआ, मैं अपने उन लोगों से दूर हुआ हूँ या उन लोगों से दूर हो गया हूँ जिनके साथ मेरी आवाज़ का रिश्ता मतलब जो है ना बन चुका है। कभी ज़िंदगी के हालात हमें जो है ना रेडियो से दूर कर देते हैं, कभी स्टेशन छोड़ना पड़ता है, कभी प्रोग्राम बंद हो जाता है, कभी फ्रिक्वेंसी बदल जाती है, मतलब फ्रिक्वेंसी जो है ना वो बदल जाती है, कभी शहर बदल जाता है और कभी इंसान कुछ अरसे के लिए खुद ही खामोश हो जाता है। मेरी बात ये समझ आ रही है आप लोगों को कि नहीं, या फिर अगली भी जा रही है आप? और कभी इंसान कुछ अरसे के लिए खुद ही खामोश हो जाता है मगर फिर अचानक किसी पुराने सामीन का मैसेज आता है, सर आप दोबारा कब आ रहे हैं, कब प्रोग्राम कर रहे हैं? और यकीन करें कि इस एक सवाल में वो मोहब्बत छुपी होती है जो शायद हजारों तारीफों में भी नहीं होती। फिर एहसास होता है कि रेडियो सिर्फ एक नौकरी नहीं है, एक जॉब नहीं है, रेडियो सिर्फ माइक नहीं है, हेडफोन और कंसोल या मिक्सर पैनल का नाम नहीं है, रेडियो एक रिश्ता है, एक रिलेशन है। और कुछ रिश्ते इंसान छोड़ तो देते हैं मगर दिल से कभी नहीं छोड़ सकता। आज भी अगर किसी दूसरे शहर से कोई सामी कोई लिसनर मुझे मैसेज करता है, सोशल मीडिया पर तलाश करके मुझे मैसेज करता है, अगर कोई पुराना सामी बरसों बाद भी कहता है कि सर हमें आपकी आवाज़ याद आ रही है या आपकी आवाज़ याद है, अगर कोई प्रोग्राम के दौरान अपना नाम नहीं बल्कि जो है ना अपनी कहानी मेरे हवाले करता है तो मुझे उसे जो है ना अपनी कामयाबी, मतलब मैं इस चीज़ को अपनी कामयाबी समझता हूँ। क्योंकि आरजी की कामयाबी ये नहीं है, ये बात याद रखिएगा लिसनर्स, आरजी की कामयाबी ये नहीं है कि उसके पास कितने अल्फाज हैं, आरजे की कामयाबी ये है कि उसके अल्फाज कितने दिलों में घर कर गए हैं, जगह बना चुके हैं। और शायद इसीलिए मुझे आज भी अपने सामीन से मोहब्बत है और अपने सामीन की मोहब्बत पर हैरत भी होती है। मैं सोचता हूँ कि आखिर ऐसा क्या है भाई, ऐसा क्या है जो एक अजनबी आवाज को इतना अपना बना देता है? फिर जवाब दिल ही देते हैं, मोहब्बत। आपने मेरी आवाज में अपना, मतलब जो है ना आपने मेरी आवाज़ में अपना वक्त दिया, मैंने आपकी खामोशी को अपनी आवाज़ दी, आपने अपनी कहानियाँ मेरे साथ बांटी, मैंने अपनी बातों में आपके एहसास को जगह दी, आपने मेरे प्रोग्रामों को सुना, मैंने आपके दिल तक पहुँचने की कोशिश की, और यूँ बग़ैर मुलाकात के या बग़ैर मुलाकात के मुलाकात हुई। बगैर हाथ मिलाए जो है ना एक तहल्लुक बना, बगैर एक दूसरे को देखे मोहब्बत बढ़ी, यही तो रेडियो का हुसन है। और मेरे लिए सबसे खूबसूरत बात यही है कि शायद जो है ना आप में से बहुत सारे लोग जो है ना मुझे सिर्फ एक आर्जिक तौर पर नहीं सुनते बल्कि जो है ना एक ऐसे शख्स के तौर पर सुनते हैं जो आपकी बात समझने की कोशिश करता है, कभी दोस्त बनकर, कभी हमराज बनकर, कभी मुस्कुराहट बनकर, कभी किसी की याद का बहाना बनकर, और कभी रात की तन्हाई में एक खामोश साथी बनकर। यहां लिसनर्स मैं ये बात कहना चाहूंगा कि 15 साल का ये सफर सिर्फ जो है ना मेरी मेहनत का सफर नहीं है, ये आपकी मोहब्बत का सफर है। आप ना सुनते तो मेरी आवाज कहाँ जाती, अगर आप इंतजार ना करते तो प्रोग्राम की रौनक कहाँ जाती, अगर आप मैसेज ना करते, कॉल ना करते, आप फरमाइशें ना भेजते, अपनी कहानियां ना सुनाते, अपनी खुशियां और अपने दुख मेरे साथ ना शेयर करते तो शायद जो है ना ये आवाज इतने सालों तक सफर ही ना कर पाती। इसलिए अगर कभी कोई मुझसे पूछे कि आपको इतने साल रेडियो पर क्या चीज़ कायम रखती है तो सिर्फ जो है ना तो मैं शायद जो है ना सिर्फ एक जवाब दूंगा कि मेरे सामीन, मेरे लिसनर्स, वो सामीन
जो शायद कभी सामने नहीं आए मगर दिल के बहुत ज्यादा करीब हैं, वो सामीन जिनके चेहरे शायद जो है ना मैं नहीं जानता मगर उनकी आवाजें पहचानता हूँ, वो सामीन जिनके घरों का रास्ता शायद जो है ना मुझे मालूम नहीं मगर उनके दिलों तक पहुंचने वाला रास्ता शायद मेरी आवाज ने बरसों में सीख लिया। और आज FM 94 रेडियो दिलबर सौबी पर बैठकर जब मैं ये बात कह रहा हूँ या जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो दिल से सिर्फ जो है ना एक दुआ निकलती है, एक दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला आप लोगों को जहाँ रखे, जिन लोगों ने मेरी आवाज़ को इतने बरस मोहब्बत दी उनकी ज़िंदगियों में खुशियाँ भर दे अल्लाह ताला, जो मुझे सुनकर मुस्कुराते हैं उनकी मुस्कुराहट कभी कम ना हो, जो मेरी आवाज़ के साथ अपनी तन्हाई बांटते हैं उनकी तन्हाई को मोहब्बत में बदल दे या अल्लाह, और जो किसी को याद कर रहे हैं उनके दिल को सुकून दे दे, और जो किसी के इंतज़ार में हैं उनके इंतज़ार को खूबसूरत अंजाम अता फरमा, और जिन लोगों ने कभी मुझे रेडियो पर सुना चाहे जो है ना एक बार चाहे 15 साल चाहे किसी एक प्रोग्राम में, उन सब के दिलों में हमेशा मोहब्बत सुकून और रोशनी कायम रख, आमीन या रब्बिल आलमीन, आमीन या रब्बिल आलमीन। और हाँ, अगर कभी मैं रेडियो से दूर हो जाऊं, अगर कभी मेरी आवाज़ कुछ अरसे के लिए खामोश हो जाए, अगर कभी किसी दूसरे स्टेशन दूसरे शहर या किसी और मतलब किसी और वजह से मसरूफियात की वजह से मैं आप तक पहुंच ना सकूं तो ये मत समझना कि ताल्लुक ख़त्म हो गया, रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, रिलेशनशिप ताल्लुक ये कायम उदाइन रहेगा, इस बात को याद रखिएगा। फजान मिशक शी चमयन देखना माँ, ऐसे ही है भाई, मुझे भी मतलब है ना कभी कभी यही शक होता है कि आप लोगों ने मुझे मयन कर दिया है।

सदर मंजूर प्रोग्राम स्पॉन्सर कई ऑर्थोपेडिक एंड ट्रॉमा सेंटर सवा भी ऑर्थोपेडिक एंड ट्रॉमा सेंटर सवा भी चर्च जय ऑर्थोपेडिक एंड ट्रॉमा सेंटर सवा भी जहांगीरा रोड कुंडा मोड़ की अलसेट सी एन जी पम तमहामा बिलाल प्लाजा धा ऑर्थोपेडिक एंड ट्रॉमा सेंटर सवाबी मौजूद है। ऑर्थोपेडिक एंड ट्रॉमा सेंटर सवाबी की सूख राजी सूख मौजूद हुई बंदी मौजूद हुई सिद पारा मौजूद हुई अगर हर सब प्रोग्राम के वे मकदर मंजूर को ऑर्थोपेडिक एंड ट्रॉमा सेंटर सवाबी की डॉक्टर तारिक रहीम से मौजूद हुई ऑर्थोपेडिक एंड ट्रॉमा सर्जन डॉक्टर तारिक रहीम से ऑर्थोपेडिक एंड ट्रॉमा सर्जन डॉक्टर तारिक रहीम से एम बी बी एस एम सी पी एस एफ सी पी एस एक्स रजिस्ट्रार एच एम सी पेशावर द हयातबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स एक्स रजिस्ट्रार फाते शिविर।

0: back right after the commercial break.
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मधम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं, बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। जेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज, जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है। क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं, दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो
2: माँ वेले माले द शारजा ने काली रावड़ा
3: जो उस्ता कालू द पारा शारजी त सिंगलार शमा
2: ओ हो पमीना बाजार दुबई की द शारजा ज्वेलर्स दुकान दे चटची द दुबई और द शारजा टूल वैरायटी मौजूद दा
3: नुदा सिवाया कना
2: शारजा ज्वेलर्स शारजा ज्वेलर्स प्रोप्राइटर जे ब्रदर्स फोन 0938273265।
4: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکته شوي وي او د چا چې د خپو د کونډو دننه لاړه ختمه شوي وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپې کږي وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس بعد هر اتوار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر څلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS FCPS ایکس رجسٹر HMC پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پتا یاد ساتي بلال پلازا السید CNG ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو د پاره یا د نمبر اغستو د پاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232

जिक एसिड हाइलुरोनिक एसिड पेंटोनोल विटामिन B5 एलोवेरा और लिकोराइस एक्सट्रैक्ट नुजका बेलाडोना तायवाजी जाफरानी क्रीम मवाई दादा

तीन सदा सुई गे ना दोबारा हम दावे मत बुनीर कम खलक जमावाजूरी शोकत जम यूडियर खुकशर दे अगत बजात खुद नन बखपला बाने माचे देनो द अजमल दिन पपटा बाने बोल के जम दा उसूल च मतलब एरा यो कस बद बली जिल्ली या बल कस बज देनो माल बिल्कुल न वर कई नो मुंग त बिल्कुल बिया खुसूसन इजाजत नि जम चला माल और कु चूंकि मंग अजमल डिस्ट्रीब्यूशन और कड़ी हुई या मंग जवाद लो और कड़ी हुई या देने लवा आसिफ लो और कड़ी हुई या देने लवा जदनो रहमान खान लो डिस्ट्रीब्यूशन और कड़ी हुई या देने लवा अहमद चालम और कड़ी हुई या दिस रसी देनो जमंग द बलूचिस्तान द अमीनागा डिस्ट्रीब्यूशन दे यूजेबल से किसी बिल्कुल लेकिन मतलब माल माल नुशूर को बोले अलबतन चिंतन माँ सोकत्ता द्वा काटन जितने तो बेलडो ना कम काटन ही दिनों आगा और तो माँ और लीगली दी तासु द बुनियर सोकत्ता जितने तासु जुड़ बाजार गेच और तो लेगी आगा ना तासु द बेलडो ना दगा प्रोडक्ट्स

हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो सलामुना सलामुना संगम चल दीजिए सहलात वक्त ठीक ठाक ये खैर खरीत थी यकीन तब ठीक ठाक ये खैर खरीत सर भाई दिलबर रेडियो गग यानी कि दिलबर रेडियो आवाज और दो दोपहरा यो जहान मनाना शुक्रिया मेहरबानी तशक्र बी सी आर चेता उस्मान सर मौजूद ये यानी कि ताहिर जमान सर मौजूद ये जी एफ एम 94 यानी कि एफ एम 94 दिलबर रेडियो सौबई आवाज अच्छा जी एफ एम 94 रेडियो दिलबर सौबई की आवाज जहाँ जिधर भी सुनी जा रही है तमाम सुनने वालों को मतलब जितने भी हमारे सुनने वाले हैं ना उनको समातों की बसारत से वेलकम कहते हैं जी एंड नहीं गलत हो गया भाई अच्छा जी कैसे हैं आप ठीक हैं खैरियत से हैं आप सब खैरियत से हैं ना यकीनन बिल्कुल ठीक ठाक होंगे खैर खैरियत से होंगे खुश होंगे मुस्कुराते होंगे और जिंदगी के शब रोज भी अपनी अपनी रफ्तार के साथ जो है ना आपके दामन में बहुत सारी नई कहानियां नए तजुर्बात नए एहसास समेट रहे होंगे मेरी तरफ से मोहब्बतों खलूस और एहतराम के साथ सलाम कबूल कीजिएगा जी एहतराम और दुआओं के साथ जो है ना सलाम कबूल कीजिएगा उन तमाम आवाज की मतलब आवाज के साथियों को उन तमाम सामीन को उन तमाम दोस्तों को जो इस वक्त जहां कहीं भी हैं घरों में हैं अपने कमरों में हैं सफर में हैं काम से वापसी पर हैं किसी खामोश सड़क पर मतलब जो है ना ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी चला रहे हैं या शायद किसी खिड़की के पास बैठकर रात की खामोशी को महसूस कर रहे हैं मैं आप सबको फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम 94.94 रेडियो दिलबर सौबई से दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूं जी वेलकम कहता हूं जनाब जरा बताइएगा कि जिंदगी के ये शब रोज आपके कैसे गुजर रहे हैं दिन कहां से शुरू होता है और रात कहां आकर ठहरती है सुबह की मसरूफियात से लेकर शाम की थकन तक और शाम की थकन से लेकर रात की इस खामोशी तक जिसमें इंसान अपने आप से बातें करता है क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि हम जिंदगी गुजार रहे हैं लेकिन क्या वाकई जो है ना जिंदगी को महसूस भी कर रहे हैं या नहीं हम कभी कभी जिंदगी हमारे सामने ऐसे ऐसे आ जाती है या ऐसे मतलब जो है ना गुजर जाती है जैसे खिड़की के बाहर से गुजरने वाली कोई ट्रेन जैसे हम मतलब अच्छा इस मौजू पर काफी सारी बातें जी काफी सारी ढेर सारी बातें हैं देन हम आगे चल के मजीद गुफ्तगु करेंगे मजीद बात करेंगे आपने अपने होने के एहसास मुझे दिलवाने हैं जी और अपने होने के एहसास कैसे दिलवाएंगे 0307 27 00 66 03 07 27 00 666 0307 27 00 666 03 07 27 00 666 आओ दा शिकार कोच यो दद खुले उनते जबरदस्त होते ट्रैक प्रोग्राम के शामिल हो जी वापस राजू चार तलाड नशी मासरा ताहिर जमान सर पाते शे जी ताहिर जमान सरों से आओ का प्रोग्राम के अखबल मौजूद गए माला एहसास राखो लिशे नो कुर्बान राखे जी 0307 27 00 666 पुख्तो यो जबरदस्त होते ट्रैक थे एंजॉय के वापस राजू नोरे खबर या तरता डिस्कस को जी नोरे खबर या तरता रखा हो

ना मैसेजेस संभला जमा शिव दीजिए दस होश गंदे डेढ़ जात अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वेलकम भैया वेलकम वेलकम वेलकम आवाज क्लियर दीजिए एंड सिंग एक ही टिकटा की नाइट प्रोग्राम सम चेंज लगी भैया प्लीज उर्दू सॉन्ग लग प्ले कीजिए जोया मास्टर प्रोग्राम की शामिल शो जी मनाना शुक्रिया जोया सलाम मामू वालेकुम सलाम जो हसनैन रईस अहमद गुवाहाटी नजे मामू तस्ता डेज एच कमदन मुबारक जी मुबारकी फजान कबूल मंजूर कीजिए खैर मुबारक जी मनाना शुक्रिया द आयज नूर रोर शेवे दे का खोर शेवे दा अरी बात अपोस के जी अरी बात तो जोड़ कमदन उस खो बपा से दे ताता जोड़ कमदन पता नहीं थे शहजादी मास्टर प्रोग्राम की शामिल शो शहजादी हुई ची मुबारकी फजान कबूल मंजूर करा ताहिर भैया आओ तास्ता द बेबी कमदन डेर जात मुबारकी जी खैर मुबारकी लगेज कमदन खैर मुबारक शाह डेर माना नाम भैया टपे हो डेर जात कमदन खुले दी हिट पश्तो सॉन्ग्स बच कमदन है उस्तास आवाज की हाय डेर मजा की डिसेंट गर्ल्स के अंदर मास्टर प्रोग्राम की शामिल शो हुए छे वेलकम टू टुनाइट प्रोग्राम टुनाइट शो स्वीट भैया अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम आखिर के वावरे सही दिखाना

अच्छा, इस ट्रैक के साथ मैं अपनी आवाज को कुछ थोड़ा सा और देन जो है ना आगे जाके बातें भी करेंगे हम। आप अगर प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, अगर आप आना चाहते हैं तो जरूर आ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, अपने होने का अपनी मौजूदगी का एहसास मुझे यानी कि ताहिर जमान को दे सकते हैं। जी प्यार है तुमसे मगर प्यार से डर लगता है, प्यार में मिली दिल को हार से डर लगता है। सरज गमन नम्रता वीगी सुमरस सुमरस जाज गमन मासर होगी वही वही वही नो दसर गज गमन पटी पटी दी बस्तर गुल गज गमन स्तर गुम हम प्यार हाउ खूब मरागल बाने माने मगवा तायरा बाने गे लगता खजुज गमन नो।

सलाम करती हूँ मैं आपको, और तुम्हारे पास एक ही बहन है और मैं आपकी बहन हूँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अगेन सर आपको सलाम ना। वालेकुम अस्सलाम जी। खुला मास्टर शामिल जी, मनाना शुक्रिया। खुला सलाम भाई जान। वालेकुम सलाम सिंह ये खेट टिकटा की मुबारक शाह पपेल अजल में दोस्ता मैसेज को शुक्रिया जी, मनाना। एंड नेक्स्ट दादशाह मैसेज आ गए दे भैया खैर दे करना बीबी शीरिनी ट्रैक शामिल के दा हुमा चर तो चिकन देना प्लेकड़े हो शामिल कड़े शीरिनी ट्रैक तो दोबारा और इधर वाले वही वही नो दा अदन जमा बखेल दा अदन भाई खा आओ आओ अदन दा अदन अदन चिकन देना बीबी शीरिनी ट्रैक ऑल टाइम रिक्वेस्ट के हर वक्त चिकन देना रिक्वेस्ट के जे बीबी शीरिनी ट्रैक हो। हेलो भैया कॉल वोले ना अटेंड के वोले ना शामिल है आसमा मैसेज के जी शामिल हूँ वो फिलहाल कमदन मैसेज यू निकल गया एम कहना हूर फ्रॉम स्वाबी प्रोग्राम अच्छा है जी भाई बेबी का नाम क्या रखा है। सभी लोग जो है ना इसी इंतजार में है कि बेबी का नाम क्या रखा है भाई। भाई जमुंग मैसेज हम कमदन शामिल कर कहना सलाम स्वीट भैया सिंह आयजा सिंह दा क्यूट बाबीता हम डेर जय सलाम क्यूट बेबी तो हम कमदन संबल्ला सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। दचा मैसेज दे तबीहा मैसेज के सौ भाई ना शुक्रिया तबीहा। और तबीहा ने अलावा सलमान भाई मुंगसरा प्रोग्राम के शामिल छो गुलू डेरे ना वही चे सलाम ना कबूल का पजान बाने। वालेकुम अस्सलाम जी मनाना शुक्रिया। मुंह खो अखपल ताहिर भाई ने कमदन दुआ बालू।

All right, sweet listeners, ek mar to phir Tahir Zamana aap logon ko welcome kehta hai. Again say welcome kehta hai Tahir Zaman. Sweet listeners, main yahan ye baat karna chahunga ki कभी-कभी इंसान के पास अल्फाज बहुत होते हैं मगर कहने के लिए सिर्फ एक शख्स होता है. कभी दिल के अंदर मोहब्बत का एक पूरा समंदर मौजजान होता है मगर ऐसे महसूस करने वाला कोई एक चेहरा भी नहीं होता. कभी आंखें किसी एक मंजर की मुंतजर रहती हैं, कान किसी एक आवाज को तरसते हैं, दिल किसी एक नाम के जिक्र पर धड़क उठता है और इंसान बज़ाहिर हजारों लोगों के दरमियान बैठा होता है मगर अंदर से सिर्फ एक ही शख्स के करीब रहता है. अंदर से एक ही शख्स के करीब रहता है. ये मोहब्बत भी कितनी अजीब शय है. ये इंसान से उसका सुकून भी ले लेती है और उससे बेसुकूनी में एक अजीब सा सुकून भी दे देती है. ये किसी को सामने मौजूद देखकर भी दूर महसूस करा सकती है और किसी को हजारों मील दूर रखकर भी दिल के इतने करीब कर देती है. लेसन्स के दिल के इतने करीब कर देती है कि हजार धड़कन में उसकी मौजूदगी महसूस होने लगती है. कभी एक मुस्कुराहट पूरी रात को रोशन कर देती है. कभी एक मुख्तसर सा पैगाम पूरे दिन की खुशी बन जाता है. कभी किसी की आवाज सुनकर दिल यूं ठहर जाता है जैसे वक्त ने लम्हों के लिए अपनी रफ्तार रोक दी हो. और कभी सिर्फ किसी का नाम सुन लेना दिल के अंदर एक ऐसी लहर पैदा कर देता है जिसे अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं होता मगर फिर ऐसी मोहब्बत के सफर में एक सवाल आकर दिल के दरवाजे पर दस्तक देता है कि आखिर जिसे दिल इतनी शिद्दत से चाहता है वो दिल को क्यों नहीं मिलता. जिसके साथ एक पूरी जिंदगी के ख्वाब देखे जाते हैं कभी वही शख्स जिंदगी की राहों में कहीं पीछे क्यों रह जाता है. जिसके लिए दुआएं मांगी जाती हैं उसी के नाम पर आंखें

बर्गेफ, अब अगर मेरी आवाज आप तक ओके आ रही है, ठीक आ रही है, तो मुझे आप आंसर्स कर सकते हैं। सो लिसनर, मैं क्या बात कर रहा था, मैं ये बात कर रहा था कि कभी सोचे आपने कि किसी एक इंसान को ही क्यों चुन लेता है दिल। यूं अगर मैं ये बात बोलूं तो ये भी बुरा ना होगा कि कभी कभी हम जिस शख्स को अपनी खुशी समझ बैठते हैं, कुदरत शायद जो है ना उसे हमारी आजमाइश समझ रही होती है। हम समझते हैं कि उसके बगैर जिंदगी अधूरी है, मगर शायद जिंदगी हमें जो है ना खोना नहीं चाहती, बल्कि जिंदगी हमें ये सिखाना चाहती है कि किसी इंसान को अपनी पूरी दुनिया बनाने से पहले अपने वजूद की कदर करना सीखो। हम किसी के साथ मुस्तकबिल के ख्वाब बनाते हैं, नाम सोचते हैं, बातें सोचते हैं, मुलाकातों के मंजर सोचते हैं, रातों की गुफ्तगू सोचते हैं, एक दूसरे के साथ गुजरने वाले दिन सोचते हैं, मगर जिंदगी हमेशा हमारे बनाए हुए नक्शे के मुताबिक सफर नहीं करती है। कभी रास्ते बदल जाते हैं और कभी हम खुद बदल जाते हैं। जिस शख्स के बगैर एक लम्हा गुजारना मुश्किल महसूस होता था, वक्त हमें उसके बगैर जीना सिखा देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मोहब्बत झूठी थी। मोहब्बत में यकीन नहीं था, मोहब्बत झूठी थी नहीं जनाब। बाज़ मोहब्बतें अपनी तकमील के लिए नहीं आती हैं, बाज़ मोहब्बतें इंसान को मोहब्बत का मतलब समझाने के लिए आती हैं, और बाज़ मोहब्बतें हमें अंदर की गहराई बताने आती हैं, हमें अपने अंदर की गहराई दिखाने के लिए आती हैं, और बाज़ मोहब्बतें हमें ये सिखा कर चली जाती हैं कि किसी को चाहना, किसी को हासिल कर लेना दोनों अलग अलग हकीकतें हैं। सो लिसनर्स, मैं यहां कुछ और भी कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं यहां भी लिसनर्स के, कभी सोचा है आपने कि दिल किसी एक शख्स को ही क्यों चुन लेता है? हजारों चेहरे होते हैं मगर नजर एक पर ठहर जाती है, हजारों आवाजें होती हैं मगर एक आवाज दिल को अपनी लगती है, हजारों लोग बात करते हैं मगर एक शख्स की खामोशी भी समझ आने लगती है, हजारों लोग मुस्कुराते हैं मगर एक मुस्कुराहट दिल के अंदर चराग मतलब जो है ना जला देती है चराग। एक आवाज या एक मुस्कुराहट दिल के अंदर चराग जला देती है। शायद मोहब्बत दलील से नहीं होती, मोहब्बत हिसाब किताब से नहीं होती, मोहब्बत कभी इजाजत लेकर दिल में दाखिल नहीं होती, ये बस आती है, खामोशी से आती है, आहिस्ता आहिस्ता दिल की दुनिया बदल देती है, और इंसान को खबर भी नहीं होती कि कब किसकी बातों का इंतजार आदत बन गया है, कब किसी की या यूं अगर मैं बोलूं तो ये भी गलत ना होगा कि कब किसी के दुख से अपना दिल दुखने लगा, कब किसी की खुशी में अपनी खुशी महसूस होने लगी, और कब किसी का नाम दिल की दुआ बन गया। लेकिन जनाब, मोहब्बत का सबसे खूबसूरत पहलू शायद यही है कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ हासिल करने का नाम नहीं है। कभी कभी मोहब्बत का मतलब ये भी होता है कि आप किसी को चाहें और फिर उसकी खुशी को अपनी ख्वाहिश पर तरजीह दे दें। कभी मोहब्बत ये भी होती है कि आप किसी के करीब नहीं हो सकते मगर दिल से उसके लिए खैर मांगते रहें। कभी मोहब्बत ये भी होती है कि आपके पास कहने को बहुत कुछ हो मगर आप सामने वाले की जिंदगी मुश्किल में ना डालें, मुश्किल ना बनाएं, खामोश रहें। कभी मोहब्बत ये भी होती है कि आप किसी को बोल नहीं पाते मगर उसके रास्ते में रुकावट नहीं बनते। और कभी मोहब्बत ये भी होती है कि आप अपने दिल को समझाते रहते हैं कि अगर वो मेरी किस्मत में नहीं तो भी मेरी दुआओं में उसके लिए जगह हमेशा रहेगी। और यहाँ ये बात भी कहना चाहूंगा लिसनर्स में कि
اور یہ انتظار بھی عجیب چیز ہے جناب. انتظار میں انسان گھڑی نہیں دیکھتا، انسان چہرہ دیکھتا ہے، فون نہیں دیکھتا، نام دیکھتا ہے، راستہ نہیں دیکھتا، قدموں کی چھاپ سنتے ہیں. انتظار میں ہر آہٹ اہم لگتی ہے، ہر پیغام امید بن جاتا ہے، ہر خاموشی سوال بن جاتی ہے. لمبی رات ہو تو لمبی رات لمبی ہو جاتی ہے، نیند آنکھوں سے دور ہو جاتی ہے، اور انسان اپنے ہی خیالوں میں ایک ایسی دنیا بنا لیتا ہے جہاں وہ شخص موجود ہوتا ہے جسے حقیقت نے ہم سے دور کر رکھا ہوتا ہے. پھر انسان تصور میں اس سے باتیں کرتا ہے، تصور میں اس کی شکایت سنتا ہے، تصور میں اسے مناتا ہے، تصور میں اس کے ساتھ چلتا ہے، اور پھر اچانک حقیقت سامنے آتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ کمرے میں صرف خاموشی ہے اور دل میں صرف ایک نام. اور یہاں طاہر یہ بات بھی کہنا چاہیے گا لسنس کے، کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ وہ شخص ایک بار سامنے آ جائے، کچھ نہ کہے، بس چند لمحے خاموشی سے سامنے بیٹھا رہے، نہ کوئی شکایت ہو، نہ کوئی سوال ہو، نہ کوئی ماضی، نہ مستقبل، بس ایک لمحہ ایسا ہو جس میں دونوں دلوں کو یقین ہو جائے کہ جو محسوس کیا تھا وہ وہم نہیں تھا. شاید اسی لیے کچھ ملاقاتیں زندگی بھر یاد رہتی ہیں، کیونکہ وہ مختصر ہوتی ہیں مگر دل پر بہت طویل اثر چھوڑ دیتی ہیں. اور یاد رکھیے گا لسنس کے، کچھ لوگ زندگی میں بہت کم وقت کے لیے آتے ہیں مگر اپنے پیچھے اتنی یادیں چھوڑ جاتے ہیں کہ انسان برسوں بعد بھی کسی خوشبو، کسی گیت، کسی جگہ، کسی موسم یا کسی لفظ سے اچانک ماضی میں واپس چل جاتا ہے. اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان خود سے کہتا ہے کہ شاید ایک وقت ایسا بھی آتا ہے میرے لسنس، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان خود سے کہتا ہے کہ شاید جو جل جو مطلب جو ہے نا ایک سوری معذرت، اچھا جی کچھ پیغامات ہیں انہیں ہم ساتھ ساتھ پروگرام میں شامل کرتے ہیں. آپ مجھے اگر میسیجز کرنے، پیغامات مجھے بھجوانے تو آپ مجھے اپنے پیغامات بھجوا سکتے ہیں. جی معذرت، آج میری تھوڑی طبیعت بھی خراب ہے.

अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं आपको मजीद भी समझा सकता हूँ और मैं आपको बता सकता हूँ। देखें दीना, आपने मैसेज किया और आपके इस मैसेज का जवाब मैं यहाँ पे आपको ये दूंगा। आपने पूछा ना कि आखिर इश्क और मोहब्बत में क्या फर्क होता है, तो आइए इस सवाल का जवाब किसी किताब की तारीफ से नहीं, दिल की जुबान से तलाश करते हैं। मोहब्बत शायद वो एहसास है जब किसी इंसान की मौजूदगी आपको अच्छी लगने लगे, उसकी बातें सुनने को दिल चाहे, उसकी मुस्कुराहट में अपनी खुशी महसूस हो, उसकी खैरियत जानने की ख्वाहिश पूरी होने लगे या ख्वाहिश होने लगे, उसके साथ वक्त गुजारने का दिल करे और आहिस्ता आहिस्ता वो शख्स आपकी रोजमर्रा जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा बन जाए। लेकिन इश्क शायद वहां से शुरू होता है जहां पसंद खत्म और एहसास शुरू हो जाता है, जहां किसी को देखने की ख्वाहिश से ज्यादा उसे समझने की ख्वाहिश पैदा होती है, जहां उसकी कुर्बत से ज्यादा उसके सुकून की फिक्र होने लगती है, जहां उसकी मौजूदगी खुशी जरूर देती है मगर उसकी गैर मौजूदगी भी उसके लिए बद्दुआ नहीं बन जाती है। मोहब्बत में हम किसी शख्स के साथ जिंदगी गुजारने का ख्वाब देखते हैं, इश्क में कभी कभी सिर्फ ये दुआ रह जाती है कि वो जहां भी हो सलामत हो, खुश हो, मुस्कुराता रहे। मोहब्बत में दिल चाहता है कि महबूब हमारा हो, देखें दीना, मोहब्बत में दिल चाहता है कि महबूब हमारा हो। इश्क में दिल कभी ये कबूल कर लेता है कि महबूब हमारा ना हो मगर उसके लिए मोहब्बत कम नहीं होती। मोहब्बत में इंसान महबूब की तरफ देखता है, इश्क में इंसान महबूब के दिल को देखने लगता है। मोहब्बत पूछती है तुम मेरे लिए क्या महसूस करते हो, इश्क कभी पूछता नहीं है, बस महसूस करता रहता है। मोहब्बत में मुलाकात एक खूबसूरत ख्वाहिश है, इश्क में एक याद भी पूरी मुलाकात बन जाती है। और ये कि मोहब्बत में आवाज सुनकर खुशी होती है, इश्क में कभी महबूब की खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। मोहब्बत में एक पैगाम का इंतजार होता है, इश्क में कभी पूरा दिन पैगाम ना आए तो भी तब भी दिल यही सोचता है शायद वो मसरूफ होगा, शायद वो परेशान होगा, शायद उसे मेरी दुआ की जरूरत होगी। मोहब्बत में शिकायत जल्दी आती है, इश्क में शिकायत से पहले समझने की कोशिश आती है। मोहब्बत शायद दिल का एक खूबसूरत मौसम है मगर इश्क ऐसा मौसम है जो गुजरने के बाद भी इंसान के अंदर अपनी खुशबू छोड़ जाता है। मोहब्बत में इंसान महबूब की खूबियां देखकर उसकी तरफ मायल होता है, इश्क में कभी महबूब की खामियां भी अजनबी नहीं लगती। मोहब्बत कहती है तुम ऐसे हो इसलिए मुझे पसंद हो, इश्क कहता है तुम जैसे भी हो मैं तुम्हें समझने की कोशिश करूंगा। यहाँ फर्क शायद मोहब्बत को खूबसूरत और इश्क को गहरा बना देता है। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है जनाब, इश्क का मतलब ये नहीं है कि इंसान अपनी इज्जत, अपनी हदूद या अपनी जिंदगी भुला दे। हकीकी इश्क इंसान को तबाह नहीं करता, उसे गहरा करता है। हकीकी मोहब्बत इंसान को कमजोर नहीं बनाती, उसे नर्म दिल बना देती है। अगर किसी एहसास में इज्जत नहीं, खैर नहीं, सच्चाई नहीं और दूसरे इंसान की आजादी का एहतराम नहीं तो उसे इश्क का नाम देना शायद जो है ना खुद इश्क के साथ ना इंसाफी होगी। क्योंकि जिस मोहब्बत में सिर्फ मुझे तुमसे मोहब्बत है या मुझे तुम चाहिए हो और तुम्हें क्या चाहिए की फिक्र ना हो, और वो मोहब्बत तो हो सकती है मगर जो है ना इश्क की बुलंदी तक शायद ना पहुंच सके। और शायद सबसे खूबसूरत फर्क ये है कि
मोहब्बत में इंसान महबूब को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता है, इश्क में इंसान महबूब की जिंदगी को समझना चाहता है। मोहब्बत में हम कहते हैं मेरे साथ रहो, इश्क में कभी दिल कहता है अगर मेरे साथ रहना है तो, या मेरे साथ रहना है तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं, तो भी मैं मतलब जो है ना मजबूर नहीं करूंगा। मोहब्बत में मिसाल की ख्वाहिश तो होती है और इश्क में मिसाल से पहले जो है ना एहतराम होता है। मोहब्बत हाथ पकड़ने का ख्वाब देखती है, इश्क कभी जो है ना दूर खड़े होकर भी दुआ देता है। और यहाँ ये बात मैं लिसनर्स कहना चाहूंगा, कुछ लोग हमें मोहब्बत सिखाने के लिए मिलते हैं, कुछ लोग हमारे इंतजार के लिए आते हैं, हमें इंतजार सिखाने के लिए आते हैं, कुछ लोग हमें जुदाई सिखाने के लिए आते हैं, और कुछ लोग हमें ये समझाने के लिए आते हैं कि दिल किसी को चाह सकता है मगर जिंदगी हमेशा दिल के फैसले पर नहीं चल सकती। शायद इसीलिए हर मोहब्बत का अंजाम साथ नहीं होता, बाज रिश्ते मंजिल तक पहुंचते हैं और बाज सिर्फ रास्ता दिखाकर गुजर जाते हैं। लेकिन अगर एहसास सच्चा हो तो रास्ता भी याद रहता है, कदमों की छाप भी याद रहती है, गुफ्तगू भी याद रहती है, और वो शख्स भी याद रहता है जिसने कभी हमारे दिल को ये एहसास दिया था कि हम भी किसी के लिए खास हैं। बात समझ आ रही है या नहीं? यकीनन के दिना आप समझ चुके होंगे, अगर फिर भी समझ नहीं आई तो मैं आपको समझा सकता हूँ। आपके जो भी क्वेश्चन हुआ करें, जो भी सवालात हुआ करें, आप मुझे बता सकते हैं जी, मैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा हदल इम्कान, जो भी मेरे पास नॉलेज है, जो भी मेरे पास इलम है। ये किसका मैसेज आया जी? खैर, इस मैसेज की मुझे समझ नहीं आ रही, पर बहुत बहुत शुक्रिया, थे फिर मिल हुए एहसास।